0: खूबसूरत पाकिस्तान कमर चाय।
1: ओह खुदाया वादरान इस देशों और जामो ही सपता होने लगेगा टोल बाजार में चांद करो और दस लखों की सुटुने में उन मुंतल और चर्त चु डिजाइन लिखे हुई अल तब बीही आसमान सर खबरें गई उधड़े में वही चिचरत लाहौर या पे खबर तलाड़म
2: खुश खबरी बटकराम दुकानदारान ला औदा करेंगे आमो खलकुला ओस पे खबर और लाहौर तदतलो जरूरत निश्त दे दिल तासुर टोलू ता बेहतरीन क्वालिटी अगा मिला भी दिलेशी अवाल तली औजान वाली कलच राम क्लाउड हाउस बटग्राम किश्ता नो दबल से गुख्तन सदा
1: राम क्लाउड हाउस बटग्राम खा अल तस्ता
2: दहर जा दवस मुताबिक दवदनो औखादियो द जामो गोरे पैकेज नश्ता मसलन दहगुई द पिंजो सुटनो पैकेज चिपुखा पिंज दर रुपए वो उस यवाजी पर्श पार्लर निम जर रुपए की दी चिपके दादे बकायदा कालीन मरीना खास सूट टिश्यू और प्रिंट शामिल दी
1: वावा दा हुडी रहा मामला दा बल से पैकेजो मिश्ता
2: आओ वाली ना दा हुई बल दा तो सुटनो वाला पैकेज दी चिपुखा पिंज पंजोस जर रुपए वो होस यवाजी पर पिंज देर जर रुपए की मिलावेगी परे की शादी फ्राक निकाह सूट अड्डाना टिश्यू डिजाइनर काटन सूट लॉन प्रिंट स्विस मेहंदी सूट वन पीस लॉन औदा सिनोर शहाना काली शामिल दी
1: लिखतिया
2: 0356-95-022 राम क्लाथ हाउस सासुदा खादियो औदा रंगुनो जामेन।

ये खा एमोला रोरो ग्रोने गे मतलब दासे छे अरोरो तास रहम मतलब दारे अगा मीने मोहब्बत आवाज सुना

सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं वो स्वाबी से और स्वाबी के साथ साथ पटग्राम से कॉल करते हैं, तो अटक वालों आप आते नहीं है तो बस ये नहीं सोचते, बिजी होते हैं और जॉबलेस लोग होते हैं, वो मसरूफ लोग होते हैं भाई। तो और साथ साथ ही एफएम के हमारे प्रोड्यूसर साहेबान है भाई, वो सुनते हैं, वो तगड़े आदमी है भाई। तो थैंक यू सो मच डेर मनन, शुक्रिया। बटकरा मर्दा सिंह है इतना खुम रो रो रिश्ते मजबूती की गा, रो रो सासु पजरुन के जमाजे पैदा की नुचसुक माँ जड़ुन के साथ ही जमावाज पजरुन के साथ ही मोला इंतजोर गावी नदीन पस वजह कमी खबर माता गलत अलारुख है सीधे लार बात है मोर्शे मोहसिन बैल वर्षे मिलवे के माता। हम तुम्हारे को गलत रास्ता नहीं दिखाते यारा, तुम हमारा मीनावाल हो नदा सिर मीनावाल चुतासो छिकलता उसका मीनावाल वे हमने गलत लारे बन खे दखपल रिजक द पारा या दखपल रिजक डेरो लो द पारा दरोह ना ना ना ना। हम तुम्हारे साथ सच बात करते हैं क्योंकि तुम हमारे कलीमे का भाई हो, तो इस वजह से हम तुम्हारे को गलत रास्ता नहीं दिखाते यारा। बहरहाल जमा सवाबे मीनवाल बापे जने और बटग्राम वाला था सुबह सुबह पे जने अटक वाला था सुबह उसमा पे जने सवाबी वाल पर रख रख के जनास्ते मी जमा पर रख रख रख के नास्ते जमा दो यो स्टोरे जमा दो यो यो कोर द हल टूल सवाबी वाल खबर दी मुझे सवाबे खल को तम जदाऊ गोरम दाद चीजो सर दो मिनट खबर हो गो तेम दाद मरगोज दे दाद शाह मंसूर दे दाद तोड़ीरी दे दाद चे दरअसलों वाला राशि नागा बतास्तो चे हाय अम्मा खयम करे ना हाय अम्मा रजलो वाला जिराशी रजलो वाला बजे पे जन्म मानेरे वाला बजे पे जन्म शाह मंसूर वाला बजे पे जन्म सूश चूस दी माल दिल तप्लाट ना अखली सूश चूस दी माल दिल तजमक की सा न रखे गिनी रे टूर सर जबा सो आबे की सब नेशनल टीम आने न रखे। बहरहाल अल्लाह मुनसीब शखा मीनावालो मंग सरताओ नासिले नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड दयोड़ी रिकामयाबे न पस बल्कि पस सवाबे के रटूल न गट सेल रिकॉर्ड जोड़ शो पस सवाबे की यादों पाटक और बटाग्राम के ने यादों अटक वाला खुया पुई गी ना जमुन ची कमलिस नर दी या प गलत सीजनो खल को राडू ली दी और बटाग्राम माला तो खल को नातून और तपले की जमुंगा करीम वाख ले मुंगा डेर खल कई नो दग खलक हम लग पोई ने दी और पर सवाबे के समूंगा मुकम्मल रिकॉर्ड जोड़ शो द योनिम करोड़ रूपो चिकम ने कुरानदाजी अगर ओनली सिक्स मंथ के द योनिम करोड़ रूपो खल को क्रिमुना शैम्पुआन फेस वॉश दवा गस्तल।

0: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: बटग्राम हलको दफारा दो खुशहाली जेरे उस तासुला बल जायदलो जरूरत निश्ता स्तासु पर अखपल हार बटग्राम के डेर मियारी और द जरूरत टूल सीजन में लावे जलेशी लक दाल चावल हर किस्म मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले 1 किलो मसाले सरा दो डबी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और हर किस्म जूस और सरहम मिलावेगी दमाशुमान दपारा द हर एक अपने वारा और स्ट्रैंड एंड पेम्पर हम मिलावेगी लकराहत स्नाइपीस और रूम पर्स नुबिया हम नंत शरीफ रोड़े रियास करियाना एंड जनरल स्टोर बटग्राम था और तरला से कई द कोर टोल राशन हम पर होल सेल और हम पर परचून और पता याद साथे रियास करियाना एंड जनरल स्टोर यूनाइटेड मार्केट बटग्राम दनूरो मालूमात दपारा बड़े नंबर राबता होके असदहान 0347-61-064-17 मोहम्मद रियाज 0356-32-017 और PTCL नंबर हम याद साथे 0997-310-490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी।
0: क्या आप अपने बच्चे के रोशन महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तदरीसी तरीके, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी

0: लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजुर्बेकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: बटग्राम हलको दफारा दो खुशहाली जीरे उस तासुला बल जायदलू जरूरत निश्ता स्तासुपा अखपल हार बटग्राम के डेर मियारी और द जरूरत टूल सीजन में लावे दलेशी लक दाल चावल हर किस्म मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले यो किलो मसाले सरा दो डबी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और हर किस्म जूस वर्स हम मिलावेगी दमाशुमान द पारा द हर एक अपने वारा और स्ट्रैंडन पेम्पर हम मिलावेगी लकराहत स्नाइपीस और रूम पर्स नुबिया हम नंत शरीफ रोड़े रियास करियाना एंड जनरल स्टोर बटग्राम था और तरला से कई द कोर टोल राशन हम पर होल सेल और हम पर परचून और पता याद साथे रियास करियाना एंड जनरल स्टोर यूनाइटेड मार्केट बटग्राम दनूर मालूमात दपारा बड़े नंबर रब्तो के असद हान 0347-61-064-17 मोहम्मद रियाज 0356-32-017 और PTCL नंबर हम याद साथे 0997-310-490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी।
0: क्या आप अपने बच्चे के रोशन महफूज और कामयाब मुस्तकबिल बटग्राम में किसी मिनी इदारे की तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क्यादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तदरीसी तरीक़े कार, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम। यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, जहनी व जिस्मानी नशोनुमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम व तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
2: अमन दरुह संदरदा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: Now your turn, Mr. Tabriz.
1: तुम एक बात कहकर भी अनजान हो गए, तुम एक बात कहकर भी अनजान हो गए, हम अपनी ही ख्याल में हैरान हो गए, जो लफ्ज तुमने कह दिए वो तीर बन गए, जो लफ्ज तुमने कह दिए वो तीर बन गए, हम मुस्कुराकर सहते रहे बेजान हो गए।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। खामोश मोहब्बत के नाम से कुछ अशार मैं अर्ज करना चाहूंगा। कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, जहां कोई मुझे पहचाना नहीं, जहां मुझे कोई पहचाने ना, जहां कोई मेरे चेहरे से मेरी उदासी ना पड़े, जहां मुझे ये बताने की जरूरत न हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं।
1: तुमसे जरा सी बात में क्या क्या नहीं कहा, तुमसे जरा सी बात में क्या क्या नहीं कहा, हम अपने दिल की रास से नादान हो गए, तुमने कहा कि बात में कुछ भी गलत न था, हम फिर भी अपने आप से परेशान हो गए।
0: मैंने बहुत लोगों के सामने मुस्कुराया है, मैंने बहुत लोगों के सामने मुस्कुराया है, सिर्फ इसलिए कि कोई मेरे अंदर का दर्द ना देख सके। मैंने कई बार कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कई बार कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सच तो ये है कि हर बार दिल के किसी कोने में कुछ न कुछ टूटता रहा।
1: कुछ लफ्ज थे जो दिल को बहुत छुप गए, मगर तुम सामने जो आए तो खामोश हो गए, हमने तो तुमको अपना समझकर कहा था सब, तुम क्या कर गए कि लफ्ज भी वीरान हो गए।
0: जिन्हें हमने अपनी दुआओं में मांगा था, जिन्हें हमने अपनी दुआओं में मांगा था, वही लोग हमारे जिंदगी से दूर हो गए, जिनके बगैर एक लम्हा गुजरना मुश्किल था, आज उन्हीं के बगैर जिंदगी गुजारनी पड़ी रही।
1: गलती अगर हुई थी तो मान लेते हम, तुम रूठे इस कदर कि हम खताकार हो गए, अब कौन पूछता है हमारे सुकूत को, तुम बोलते रहे हम फकत खामोश हो गए।
0: वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया, लोगों को पहचानना भी, खामोश रहना भी और अकेले मुस्कुराना भी।
1: तुम एक लफ्ज गलत कह गए, असर रह गया, तुम एक लफ्ज गलत कह गए, असर रह गया, वो बात खत्म हुई, दिल में एक सफर रह गया, हमें तो शौक था तुमसे हर एक रास कहे, तुम्हें गुमान था शायद सो फिर खतरा बन गया।
0: अब किसी से शिकायत नहीं, न किसी से कोई उम्मीद बाकी है, बस दिल ने ये सीख लिया है कि हर अपना हमेशा अपना नहीं रहता और हर वादा आखिर तक निभाया नहीं जाता।
1: जो बात होंठ पे आई वो कह न पाए हम तुम्हारी आंख में, लेकिन वो हुनर रह गया, तुम अपने लफ्जों को दुनिया सुनवारती ही रहे, तुम अपने लफ्जों की दुनिया सुनवारती ही गई, हमें तो टूटने का बस एक डर रह गया।
0: काश कोई एक बार पूछ लेता, काश कोई एक बार पूछ लेता तुम वाकई खुश हो, तो शायद आंखें सब कुछ बता देती, क्योंकि कुछ आंसू अल्फाज के मोहताज नहीं होते।
1: कभी तो पूछ लिया करते, कभी तो पूछ लिया करते हाल दिल हमारा, तुम्हें तो अपनी ही बातों का ही खबर रह गया। तुम्हारी एक बात, तुम्हारी एक गलत बात ने बदल डाला हमें, वो शख्स चाहता था किधर रह गया।
0: अब भी कभी रात के सन्नाटे में तेरी याद चुपके से आ जाती है, दिल तुझे भूलने का दावा तो करता है, मगर तेरी एक याद सारी हकीकत सामने ले आती है।
1: हमें गिला नहीं तुमसे, मगर ये दुख तो है, तुम्हारे बाद भी दिल में तुम्हारा घर रह गया। अब उस मुकाम पे क्या बहस लफ्ज व मानी की, जो कहना था वो कहा, जो ना था मगर रह गया।
0: तुम खुश रहो मेरी दुआ है, तुम खुश रहो यही है मेरी, यही दुआ है मेरी, चाहे मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ ना सही, मगर मेरी दुआओं में तुम आज भी शामिल।